0: ताजी लामा सोंगवे सोंगशे दी शेजि लईन शोकप रिंगनी खायो शोकलोंग थांग ला काटा खिगा वामे शुगु जेप्स जेप्ल क्यों था लेग थेद छागवा सम्लु दोंजो इनबे लेग थेद मनी छुंगला पेजी इन नोस कशा ताजी लेशे मंगुजिगी नंगोला सेंगेल हेंगेगेले पेजी थेकोंला सेन्युयु किजे नेजु मिमांगे दिन्दे सुंगु दोवाला लेग थेद छागवास Samlu dongjo yinruz. Da xiezi di jidang, da jik leeshe naga mangbu yorba. Xinga debye yinari, xinga lodo duye yinari. Ya jik gana zu karishu gore chukri yigirwa, chukle na nye kuna zu chokwe leeshe nanglo la yinari. Di xiezi di mangbu tunggiduwa. Lega kweta chakwa, samlu dongjo yinruz. Ta ti yinwa yinna, ti tohne jik jaji mima manzo ki, hini lega riga jangbe. Gashinda jik lega tila ya zimbe dadanji sebul ya zuntogu doosyo yi.
1: Mi gari zina lobjong gale chi la lega tsugyo yang gale chi sir. Yang gari tsowa gatsik chiwe mi ziya nyingu mejin mi yu dile chomindu se suwa shi.
2: Kye ki nyingi jise la ke sumgele mejang gamari rinang luburu cha sheng a kodun chi giyue.
1: Kira lwishik si nga shubin gable, kirangi gisi gen, kirangi subu jitse ki gyatze gyatan shubru samgi nunshu sugu gishi.
2: Kirangi puwe tukse la haomi sumne nga pale me. Ina yang kirane xe la gyatze chu sarji, puwa di tie kongle, dab ga xe ki chiru gishi.
1: Kirangi subu na chepung tungchur bumcha gaja yoshi. Changyum chepi ina garcha rina chepung sayo sumzam ka giyo yu.
2: Kerami yudiri tsune jebar gyab yurjiji. Kerangi subyu gale chimbukyo yu.
1: Cheza, nga tsui jishi zhubje, rengi ki tsuso tan nyamdo biozun chebi yin, yagun mi duwe le.
2: Mi yudu, tsua ni tuyni dema jiji. Gaji dinbe gijik ma riri, kerang gaju rabdu nyubar jila. Kerang simkyu timi, mikshu ya wangmi du shurwa jili. Tsue nang, gatsi jizang yu ya, gacho shigri yu. Mikbi yu na,
0: 人家车是一样,也能让普通人就用我去吧,能够能够。今天有别忘记,你有点厉害,全年点。传播有别忘记,你有点厉害,自卫处。集团那位忘记,你有点厉害,第几点,我做孙波那边忘记,你有点厉害,全年给处。老那么人家,想不能不拉给,平常时常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常 나 못 되지 그랬어. 다 조접도 쉬부이나. 패치 셈부부 망부 킹게 요시. 아, 조접도 쉬어야 되이나. 동가 로도디게 녜차제 신게 띵나야. 루루 쇠제 풍소 접제. 세그도 가나 대규림들라 조접부 쉬고 요시. 조접부 쉬어야 되이나. 다지 조디 접제 아니 신게 감산 따야. 딘데게 규림지 쓰기 요시. 다야 조디 접에 겁을 이내래. 야 접도 그 내세 된다 도발. 다 샴라 임바이나. 아니 정규게 조접도 그 내세 되나야지. 세나도.
3: 그만